कोई फूलों पे नाचता है और कोई अंगारों पे नाचता है, नौकर मालिक के इशारों पे नाचता है। बेचारा चांद रात भर सितारों पे नाचता है, कोई जमाने के लिए, कोई दिखाने के लिए और कोई यार मनाने के लिए।

इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

गम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुझ पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुझे दिम सही हा, हा। इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुद।